0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।

107 FM रेनबो यानी दिल से दिल तक। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त ओम। तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को ओम का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, नॉनस्टॉप गपशप में बहुत सारी बातें होंगी, खबरों की दुनिया, मौसम की जानकारी, इतिहास में आज का दिन, अपने प्यारे शहर कोलकाता की कुछ खास खबरें बातें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत चूंकि नॉनस्टॉप गपशप है तो सबसे पहले इस प्यारे से गीत के साथ करते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज में प्यारा सा गीत आप सभी दोस्तों के लिए।

आज 11 जुलाई है, हर पल दुनिया की बढ़ती आबादी का विशेष दिन। जी हाँ दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साल 1990 से मनाए जा रहे इस दिवस का उद्देश्य दुनिया की जनसंख्या से जुड़े रुझानों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा को समझना है। आज वैश्विक आबादी लगभग 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले दशकों में नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। तब जनसंख्या के बदलते स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया की आबादी का वास्तविक समय का अनुमान वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जो यह भी बताती है कि जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है और ऐसे में भारत इसे दूसरे नजरिए से देखता है। करेंगे बात और भी बहुत सारी। जी हाँ दोस्तों, भारत इस आपदा को अवसर के रूप में बदलने में पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। आज भारत लगभग 148 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला देश है। जहां एक वर्ग इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति मानता है, वहीं दूसरा वर्ग इसे बेरोजगारी, संसाधनों पर बढ़ते दबाव और सामाजिक असमानता की वजह भी मानता है। सच यह है कि आबादी अपने आप में न ताकत होती और न बोझ, उसकी शिक्षा, उसकी दिशा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल तथा रोजगार तय करते हैं। चुनौती संख्या नहीं गुणवत्ता की है। किसी भी देश की वास्तविक ताकत उसके नागरिकों की गुणवत्ता से तय होती है। ऐसे में भारत इस विश्व की आपदा को अवसर के रूप में बदलने की ओर लगातार सतत प्रयास कर रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और स्त्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही हैं। कार्यक्रम में और भी खबरों की बातें होंगी दोस्तों कार्यक्रम में, लेकिन उसके साथ बढ़ेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म धुरंधर से लिए गए इस प्यारे से गीत को। अरमान खान की भी आवाजें हैं, इरशाद कमील ने लिखा है, शाश्वत सचदेव ने इसे संगीत से सजाया है।

भारत की स्थिति जनसंख्या के दृष्टिकोण से अलग है। यहाँ औसत आयु लगभग 29 वर्ष है और करीब 65% आबादी कार्यशील आयु वर्ग में है। हमारे लिए जनसंख्या के लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। भारत केवल आबादी के लिहाज से बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे आकर्षक उपभोक्ता बाजारों में भी शामिल है। डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में करोड़ों संभावित ग्राहक मौजूद हैं। यही वजह है कि वैश्विक कंपनियां भारत को अगले 2 दशकों तक सबसे महत्वपूर्ण बाजार मान रही हैं। डिजिटल इंडिया और UPI जैसे

ई पहलू ने इस क्षमता को नई गति दी है। इंटरनेट गांव तक पहुंचा है, डिजिटल भुगतान आम हो चुका है और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। जहां दुनिया में कई देशों के लिए बढ़ती आबादी एक आपदा के रूप में काम कर रही है, वहीं सरकार ने पहल की है, रफ्तार बढ़ी है और इस आपदा को अवसर में बदलने का काम भारत कर रहा है। पिछले एक दशक में नई शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे नए अवसर बने हैं, अपेक्षित परिणाम आने हैं। नई शिक्षा नीति कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देती है। ऐसे में जनसंख्या की बड़ी आबादी हमारे लिए आपदा में अवसर का काम करेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है।

107 FM रिम्बो यानी दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:20 और 25 सेकेंड हुए हैं दोस्तों। कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप, आप है अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म किस से लिए गए इस प्यारे से गीत को, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत से सजाया व्हाइट नॉइज कलेक्टिव ने।

107 FM रेनबो यानी दिल से दिल तक कार्यक्रम चल रहा है नॉनस्टॉप गपशप आप है अपने रेडियो दोस्त ओम के साथ। विद्यागत सागर सेतु 12 जुलाई को 16 घंटे रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, रविवार के दिन विद्यासागर सेतु पर मरम्मत एवं पुनर्वास कार्य किए जाने के कारण रविवार 12 जुलाई 2026 को 16 घंटे तक पुल पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान पुल के स्टे एवं होल्डिंग डाउन केबल बेयरिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक हिस्सों को बदला जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार 12 जुलाई को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक विद्यासागर सेतु तथा इसके सभी रैंप पर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। मरम्मत कार्य के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एजेसी बोस रोड की ओर से आने वाले पश्चिम मुखी वाहन टर्फ व्यू से 8 ग्रैंड रोड होते हुए हेस्टिंग क्रॉसिंग की ओर भेजे जाएंगे। वहां से वाहन सेंट जॉर्जेस गेट रोड और स्टैंड रोड के रास्ते हावड़ा ब्रिज पहुंच सकेंगे। आवश्यकता होने पर हेस्टिंग क्रॉसिंग से दाहिने मुड़कर केपी रोड का भी उपयोग किया जा सकेगा। यानी रविवार के दिन आप विद्यासागर सेतु की योजना बना रहे हो तो इसे ध्यान में रखें। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्त अलका याग्निक अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म तमाशा से लिए गए इस प्यारे से गीत सुख को सुनेंगे। गीतकार इरशाद कमील, संगीतकार ए आर रहमान।

चिप शुरू की जाएगी रेलवे के कंबल चादर चोरी। जी हाँ दोस्तों, चोर अब संभल जाएं। भारतीय रेलवे के हर कंबल चादर और तौलिए में बेहद छोटी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID चिप लगाई जाएगी। जैसे ही कोई यात्री इन्हें लेकर ट्रेन या स्टेशन के निकास द्वार से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पकड़ में आ जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे हर साल होने वाली चोरी पर रोक लगेगी। साथ ही योजनाओं के तहत प्रमुख स्टेशनों के निकास द्वारों पर RFID रीडर लगाए जाएंगे। यदि कोई कंबल चादर तौलिया तकिया बिना अनुमति गेट से बाहर जाएगा तो सेंसर उसकी पहचान कर तुरंत हूटर बजा देगा। इससे चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगी। साथ ही RFID

तकनीक से अब हर बेडरोल का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज होगा कि वह कब इस्तेमाल हुआ, कब धुलाई के लिए गया और कब दोबारा कोच में पहुंचा। इससे गंदे, बदबूदार या समय पर उपलब्ध न होने वाले कंबलों और चादरों की शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है। कैग की रिपोर्ट के अधिकारी के अनुसार रेलवे हर साल 14-15 करोड़ बेडरोल उपलब्ध कराता है। इनमें से 10 से 12 लाख बेडरोल हर साल गायब हो जाते हैं। इन चोरियों से हर साल 50 से 60 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान रेलवे को होता है। चोरी होने पर कई बार इसकी भरपाई कोच अटेंडेंट हाउसकीपिंग स्टाफ के वेतन से करनी पड़ती है। नई व्यवस्था से 50 से 60 हज़ार अटेंडेंट और हाउसकीपिंग कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। अच्छी बात है, नया प्रयास, नई योजनाएं होनी चाहिए।

107 FM रेमबो यानी दिल से दिल तक स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:40 और 50 सेकेंड हुए हैं। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप चल रहा है और आप हैं रेडियो दोस्त ओम के साथ। रिश्तों का विश्व कप। दादा को मैच दिखाने के लिए पोते ने खर्च कर दी अपनी सारी जमा पूंजी। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इंग्लैंड के 21 वर्षीय जैकब ऑलमेंडिगर के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ अपना घर खरीदने का सपना था जिसके लिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर 10,000 पाउंड जमा किए थे। दूसरी तरफ 79 वर्षीय दादाजी की वह ख्वाहिश थी जो शायद दोबारा कभी पूरी न हो पाती। आखिरकार

जैकब ने घर को इंतजार करने दिया और दादा के साथ फीफा विश्व कप 2026 की यात्रा पर निकल पड़े। उनके इस फैसले ने जहां दादाजी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, वहीं उनका पैसा भी लौट आया। जी हां, दादा पोते की यह जोड़ी अमेरिका और मैक्सिको की यात्रा के दौरान इंटरनेट पर वायरल हो गई। ऐसे में उनकी इस कहानी को जानकर अमेरिका स्थित क्रिप्टो कैसिनो मेटाविन ने ऐलान किया कि अगर इंग्लैंड की टीम कांगो को हरा देती है तो जैकब के पैसे वापस कर देंगे। जैकब की किस्मत भी उनके साथ थी। कांगो के खिलाफ उस मैच में इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज कर ली। ऐसे में क्रिप्टो कैसिनो के मेटाविन ने अपने वादे को पूरा किया और उन्हें 10,000 पाउंड वापस कर दिए, यानी रिश्तों की जमा पूंजी में रिश्तों का विश्व कप जीत गया। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, जुबिन की आवाज में गैंगस्टर फिल्म से लिए गए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे। गीतकार सईद कादरी, संगीतकार प्रीतम।

रिकॉर्ड बना टूट, फ्रांस सेमीफाइनल में फिर से नॉकआउट मैच में मोरक्को के खिलाफ एम्बापे ने दागे गोल। नॉकआउट के सम्राट बने एम्बापे। ग्रुप चरण में गोल करने वाले खिलाड़ी हर विश्व कप में मिल जाते हैं, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में गोल करने वाले खिलाड़ी इतिहास की किताबों में जगह बनाते हैं। यही वजह है कि विश्व कप के नॉकआउट गोल हमेशा अलग नजर से देखे जाते हैं। फ्रांस के एम्बापे ने विश्व कप के नॉकआउट मैचों में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसे दुनिया के महान फुटबॉलर पेले, माराडोना, रोनाल्डो और मेसी नहीं कर सके। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ गोल कर फ्रांस को सेमीफाइनल में पहुंचाने वाले एम्बापे के अब नॉकआउट मैचों में गोलों की संख्या 12 हो गई है। दूसरे स्थान पर कायम ब्राजील के लियोनिदास रोनाल्डो तथा अर्जेंटीना के मेसी से यह 4 गोल अधिक है। तीनों ने विश्व कप के नॉकआउट मैचों में 8-8 गोल दागे हैं। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे दीप मणि, नेहा भसीन, कमल कमाल खान की आवाज में फिल्म रेस 3 से लिए गए इस प्यारे से गीत को। गीतकार कुमार संगीतकार मीत ब्रदर्स।

107 FM रेम्बो यानी दिल से दिल तक। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:54 हुए हैं दोस्तों। कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपने आखिरी पड़ाव पे है। आइए जान ले क्या है मौसम का हाल। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में कोलकाता एवं आसपास के इलाकों में सामान्यतः आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूर्ण संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीते कल का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस अर्थात सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम तथा न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस अर्थात सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हवा में नमी यानी अधिकतम आर्द्रता 98% तथा न्यूनतम आर्द्रता 95% दर्ज की गई। तो दोस्तों ये था मौसम का हाल। कार्यक्रम के अंत में सोनू निगम, सुनिधि चौहान, आमिर खान, काजोल की आवाज में फिल्म फना से लिए गए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे। गीतकार प्रसून जोशी, संगीतकार जतिन ललित। इसी गाने के साथ अपने रेडियो दोस्त ओम को दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को ओम का प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: Dumped is a BBC Sport production for the BBC World Service in association with ABC and Akashvani.
1: Kane Bajuk, Monir Radio, Shuncho, 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: कालोजयी बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कालोजयी बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 107 FM Rainbow Presents
1: परियोजना प्रस्तुति
0: सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
2: तीन बजकर 3 मिनट और 6 सेकंड। स्वागत है आप सभी का 107 FM रेनबो दिल से दिल तक में। और दोस्तों, इस वक्त कार्यक्रम 3 का तड़का शुरू होने से पहले हम आपके सामने पेश कर रहे हैं परियोजना प्रस्तुति। मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती। दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति में हम जिस योजना की बात करेंगे वो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। शिक्षा सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। हम सभी जानते हैं इस कहावत को। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है कि वह ऊंची शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में सफलता हासिल करे। लेकिन अनेक परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की सहायता के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। यह योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे वे बिना आर्थिक चिंता के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

0: दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, कानून तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋण का उपयोग प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, पुस्तकें, लैपटॉप, हॉस्टल शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार मिलने पर उसे आसान किश्तों में वापस चुकाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। वे बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। यह योजना समाज में समानता लाने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। पहले केवल संपन्न परिवारों के बच्चे ही महंगी शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, जबकि अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने का सुअवसर मिल रहा है। इससे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है और देश को योग्य डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक तथा अन्य कुशल पेशेवर मिल रहे हैं। इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कई विद्यार्थियों को इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। कुछ स्थानों पर आवेदन प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है तथा ऋण स्वीकृत होने में समय लग जाता है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए और योजना का प्रभावी प्रचार प्रसार किया जाए तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। आज के समय में शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। दोस्तों, आज प्रयोजना प्रस्तुति में हमने बात की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की।
1: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM Rainbow पर
0: दोस्तों, कार्यक्रम तीन का तड़का में मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती और इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत हम कर चुके हैं और तीन का तड़का आपके साथ रहेगा शाम के 4 बजे तक। तो फिर क्या फिक्र है आपको भाई, एकदम वीकेंड है और साथ में बेहतरीन तराने हैं और साथ में 107 FM रेनबो है। तो बस जब हो बंधु साथ तो भाई क्या हो बात।

3:13 और 5 सेकंड। दोस्तों आप सभी है इस वक्त 107 FM रेनबो द रियल रेडियो पर कार्यक्रम 3 का तड़का में मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती और रहूंगी शाम के 4 बजे तक कार्यक्रम 3 का तड़का। भाई 3 के तड़के की तो बात नहीं, लेकिन अगर आप तड़के वाली दाल और उसके बाद रोटी खाकर सो रहे हैं अपने कंफर्टर के साथ और सोच रहे हैं कि काश ऐसा ही खुशबूदार कंफर्टर जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं तो मिले। भाई खुशबू की तो बात पता नहीं है, लेकिन यूज्ड कंबल शायद से ना मिले आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर ये है कि अब भारतीय रेलवे के हर कंबल, चादर और तौलिये में बेहद छोटी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID नामक एक चिप लगाई जाएगी। जैसे ही कोई यात्री इन्हें लेकर ट्रेन या स्टेशन के बाहरी द्वार से निकलने की कोशिश करेगा तो पकड़ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो चोरी रुकेगी, लेकिन यूज्ड कंबल का क्या ही करे। नहीं, अगर ये तकनीक लगी तो अब हर बेडरोल का पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज होगा कि वह कब इस्तेमाल हुआ था लास्ट और कब धुलाई के लिए गया था लास्ट और कब दोबारा कोच में पहुंचा। इससे गंदे, बदबूदार या समय पर उपलब्ध ना होने वाले कंबलों और चादरों की शिकायतों में भी कमी आने की उम्मीद है। तो भाई बस हमारी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि कई वक्त ऐसा होता है कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को ये शिकायत रहती है कि ये कंबल शायद से यूज्ड है, और वाकई में ये देखा भी जाता है कि ऐसा हुआ है। तो इस वक्त इस नोट

के साथ हम नेक्स्ट ट्रैक की ओर जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए रहेगा तीन का तड़का कार्यक्रम में, और मैं हूँ आपके संग आपकी आरजे भारती, रहूंगी शाम के 4 बजे तक। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो के।

3:20 हो रहा है इस वक्त समय, और हमें बता रही है स्टूडियो की घड़ी कि इस वक्त भाई थोड़ा सा फिल्मी जगत से हम आपको कुछ खबरें दे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वीकेंड है और शाम आपने सॉर्टेड रखी नहीं होगी, तो प्लीज़ जाकर देख आइए धमाल 4, एक टोटल एंटरटेनिंग फिल्म जो है वो रिलीज़ हो गई है। और पता ही है आपको कि धमाल 4 है तो वहाँ पर अर्शद वारसी होंगे, आदि मानव की जोड़ी होगी और अजय देवगन होंगे साथ में, और भी जो भी पुराने धमाल से जुड़े हुए थे कई सारे एक्टर्स इस फिल्म में भी रिपीट हो रहे हैं। तो भाई सैटरडे आपकी शाम अभी भी बाकी है और जवां भी है, तो क्यों ना आप देख आए धमाल 4 जो रिलीज हुई है आज। और बता दें आपको कि इस फिल्म ने अच्छा ओपनिंग रिस्पॉन्स भी किया है, तो किस बात की देरी है, किसी की बातों में मत उलझे रहिए, कुछ इस जनाब की तरह राघव तनिष्क और असीज की आवाज में ये गीत। लेकिन याद है ना, धमाल 4 देखनी है आपको।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
1: दोस्तों, अगर आप मेरी एडवाइस को वाकई में मान रहे हैं और आपने अभी अभी फ़ोन से टिकट्स बुक कर दी हैं धमाल 4 की, तो भाई इसका मतलब आप अच्छी तरह से FM रेनबो सुन रहे हैं। और अगर आपने नहीं भी काटी है, सुन रहे हैं, तो उतने में ही मैं खुश, आप खुश, और क्या चाहिए भला। वीकेंड में खुश रहिए, क्योंकि फिर तो नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे जब आएगा आपके लिए, तो बस अपने साथ फिरस्त लेकर आएगा कि क्या क्या करना है और क्या क्या रह गया है। फ्राइडे तक देखिएगा कि बहुत कुछ ही रह गया है, लेकिन बहुत कुछ कर भी लिया है। तो इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बहुत कुछ किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और उनके इस ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप के बाद, जहां पर प्रधानमंत्री ने एंथनी अल्बनिज के शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग का नया रोड मैप जारी किया गया। इसका उद्देश्य खेल प्रशिक्षण, खिलाड़ियों के विकास, खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल उद्योग में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। इस मौके पर सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी BBL का उद्घाटन मैच इस वर्ष दिसंबर में चेन्नई में MA चिदम्बरम स्टेडियम में मेलबर्न ड्रैगन्स और पर्थ स्क्वॉश के बीच खेला जाए। तो भाई बिग बैश लीग, वो भी मुंबई में, और क्या चाहिए। तो बस ऐसे ही खबरों के लिए अगर आपको रहना है तैयार, तो भाई सुनना भी होगा आपको कार्यक्रम 3 का तड़का सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर, जहां मैं हूं आपकी RJ भारती, और दिल बेचारा इस वक्त टाइटल ट्रैक के संग राजी है। नहीं, आपके दिल की बात नहीं, ये AR रहमान गुनगुना रहे हैं कुछ इस टाइटल ट्रैक में। सुनिए आप भी दिल बेचारा।

जी आंखों में अदाए कोई पूछे तो कैसे भुला सकते हैं हम ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को, और जिन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री में अपना डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया। और जानते हैं हम कि हेमा मालिनी ने अपने पूरे करियर में कितनी सारी हिट फिल्में दी हैं। भाई इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को उन्होंने उनके ट्रिब्यूट के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक हाल ही में एक सभा रखी गई, जहां पर उन्हें उनके 60 साल इंडस्ट्री में पूरे करने के लिए सभी ने बधाई दी। तो भाई आने वाला गीत इस ड्रीम गर्ल के नाम, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के नाम।

दोस्तों, इस वक्त आप कार्यक्रम 3 का तड़का में एकदम आखिरी गीत की ओर चले आए हैं। ठीक 5:15 पर एफएम गोल्ड 100.2 पर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। मेरी होगा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक, जहां हम आपको सुनाते हैं एवरग्रीन हिट्स। और ठीक शाम 7 बजे आपके साथ रहूंगी, 7:02 पर आपके साथ रहूंगी आपके फेवरेट कार्यक्रम छाया लोक के संग। श्रेया घोषाल और फरहान सईद की आवाज में इस गीत को सुनते सुनते थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए 107 FM रेनबो। मैं थी आपके संग आपकी आरजे भारती।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: जाने अनजाने,
2: एक सौ सात एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक स्वागत है आप सभी का। इस वक्त समय हुआ है 7:03 और आज की शाम मैं हूँ आपके संग आपकी दोस्त भारती और रहूँगी आपके संग 8 बजे तक। कार्यक्रम छायालोक में जाने अनजाने में आपके संग रहूँगी मैं 8 बजे तक और 8:02 से आपके साथ 9 बजे तक रहेंगी संचिता। दोस्तों, कार्यक्रम छायालोक में आज जाने अनजाने में हम जानेंगे उन अनजान तथ्यों के बारे में जो कि है एक हिट गीत, क्या एक हिट राज भी। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे क्योंकि एक वीकेंड है आज, तो पार्टी वाली और थोड़ी सी धमाचौकड़ी मचाने वाली तो रात है ही, तो इसीलिए एक पार्टी ट्रैक के साथ आज के इस गीत की आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, वेस्ट पार्टी टुनाइट, कभी अलविदा ना कहना से। दोस्तों, ये गीत जो आप सुनेंगे वो रिलीज हुई थी ये फिल्म 2006 को और इस फिल्म के गीतकार थे, संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय और गीतकार थे जावेद अख्तर। इस गाने में आवाज़ है शान की, वसुंधरा दास, शंकर महादेवन और लियो मोंडेसा, लॉय मोंडेसा है। अभिनेता जॉन इब्राहिम ने इस गाने में एक कैमियो किया है डीजे बनकर। बाद में कुछ ऐसा ही डीजे टाइप का कैमियो करते हुए देखा गया था आलिया भट्ट को, कौन सी फिल्म, ऐ दिल है मुश्किल में। जी हाँ, जहाँ डीजे है वहाँ पे तो पार्टी रहेगी और थोड़ी सी मस्ती रहेगी ही। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस गीत के साथ, वेस्ट पार्टी टुनाइट। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक जाने अनजाने अपनी आरजे भारती के संग।
3: Wanna natural night?

ब्रेकअप सॉन्ग हम कर रहे हैं वाकई में, लेकिन उस सॉन्ग को ब्रेक कर रहे हैं और उसके तथ्यों को आपके सामने ला रहे हैं जो बनी है एक सुपरहिट गीत, लेकिन उसके पीछे भी है कई सारे, उस हिट गीत के पीछे भी है कई सारे हिट गीत। जी क्या मैं बोल रही हूँ, बोल मैं ये रही हूँ कि एक गीत था फिल्म राजा से, नजरें मिली दिल धड़का, उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया था और माधुरी दीक्षित और संजय कपूर बड़ी ही मत वाली चाल में थिरके थे इस गीत में। पर आपको क्या पता है कि इस गीत की धुन के बारे में लंबे समय से एक चर्चा रही है कि ये पश्चिमी गीत सील्ड विद अ किस के कवर संस्करण से प्रेरित थी। और एक और रोचक बात यह है कि उसी साल आई थी आमिर खान और ममता कुलकर्णी स्टारर फिल्म बाजी, जिसमें गीत था डोले डोले दिल डोले, जिसमें एक ही तरह का धुन इस्तेमाल किया गया था। आपको नहीं पता या भूल गए हैं आप, सुन लीजिए, याद जरूर आ जाएगा।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक जाने अनजाने।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक 107 FM रेनबो द रियल रेडियो पर। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती श्यामर, के 8 बजे तक आपके साथ

रहूंगी, उसके बाद 8:02 से आपके संग रहेंगी संचिता। दोस्तों, इस वक्त जिस गीत को हम लोग सुनेंगे वो है फिल्म रावण से। पहले सुनिए तो इस गीत को। गीत में आवाज है कौन और हमसिका अय्यर की। बता दे आपको कि इस गीत की क्या है खास बात। सभी जानते हैं कि ये गीत आज भी कितना हिट है। चमक छल्लो को अमेरिकी सेनेगाली गायक एकॉन ने गाया और ये किसी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए उनका पहला भारतीय कोलैबोरेशन था। 3 भाषाओं का अनोखा मेल है इस गीत में, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल, जिसने इसे एक इंटरनेशनल पहचान दिलाई। गाने का संगीत विशाल शेखर का है और जबकि बोल जो है वो विशाल ददलानी और निरंजन आयनगर ने लिखे हैं। दोस्तों, एकॉन ने हिंदी उच्चारण सीखकर इस गाने की रिकॉर्डिंग की। संगीतकारों के अनुसार उन्होंने केवल 3 से 4 घंटों में ही हिंदी पंक्तियां सीख ली थी। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इस गीत के साथ भरपूर थिरक रही थी भाई। अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि इस वक्त थोड़ा सा एक पुराने गीत कहूंगी तो हाँ 1970

78 रिलीज फिल्म खट्टा मीठा के इस गीत को हम लोग जानेंगे और जानेंगे इस गीत से जुड़ी कुछ अनजानी बातें, क्योंकि है ना हमारा कार्यक्रम जाने अनजाने इसी के लिए खास। दोस्तों ये गीत है फ्रेनी ओ फ्रेनी, पारसी संस्कृति की झलक दिखती है इस गीत में, क्योंकि ये पारसी परिवार की पृष्ठभूमि को मज़ेदार अंदाज में इस गीत में प्रस्तुत किया गया था, जो कि थी फिल्म खट्टा मीठा की। पूरी फिल्म में पारसी समुदाय की जीवन शैली और हंसी मजाक के सुंदर पल दिखाए गए थे। राजेश रोशन का यादगार संगीत था इस फिल्म में और बोल थे गुलजार के। फ्रेनी ओ फ्रेनी को अमित कुमार और शैलेंद्र सिंह ने गाया था और साथ थे उनके सहगायक। इस गीत में एक बेहतरीन बात ये दिखी थी इस फिल्म में और इस गीत में, खासकर अमिताभ बच्चन दिखे थे। और बता दें आपको कि इस धुन का, इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल धुन है जिसको फिर से राजेश रोशन ने 1997 में यूज़ किया था फिल्म कोयला में। गीत था तन्हाई तन्हाई। दोस्तों ये दोनों गीत हम सुनेंगे इस वक्त बैक टू बैक, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर, कार्यक्रम छायालोक सैटरडे स्पेशल जाने अनजाने में।

0: जी जी बिल्कुल एकदम सही। जो आपने गीत सुना तन्हाई तो थी उसमें, और साथ में एक सुकून भरा एक पल था। लेकिन अगला गीत जो है वो थोड़ा सा धमाकेदार है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस गीत की धुन अक्सर इस चर्चा में रही कि ये स्पैनिश पॉप हिट माकरीना से प्रेरित थी। बताइए तो, वैसे तो हिंदी फिल्मों में ये धुन जो है कई जगह पर इस्तेमाल की गई है, लेकिन ये गीत खासकर एकदम इंस्पायर्ड थी दिल ले ले ना 1997 में आई थी ये फिल्म औजार। इस गीत के गायक हैं अभिजीत भट्टाचार्य, अनु मलिक और जोजो, और साथ में है अनामिका सिंह। संगीत भी है अनु मलिक का, हु एल्स। इस गीत को एकदम से 90s में कई सारी बॉलीवुड पार्टी में बजाया जाता था, और साथ ही ये जो फिल्म थी औजार, ये सोहेल खान के पहली निर्देशित फिल्म भी थी। तो भाई हम क्यों इतना बात कर रहे हैं इस वक्त, सुन लेते हैं इस गीत को और थिरक भी लेते हैं कई दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ 107 पर ये गीत।
1: About to hear a song that has been heard before. This is different, you know, because it is funk, funk, funk, defunk, defunk, defunk.

0: Lelena.
1: Now that we have heard the song, which is supposed to be different, how different? You find out, okay? Funk, funk, funk, defunk.
2: वाकई में दिस सॉन्ग वॉज रियली डिफरेंट. और अभी अभी जिसने भी ये गीत सुना होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो और ट्रैवल कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, उसने गाड़ी ज़रूर रोककर इस गीत को पहले एकदम गूगल किया होगा और देखा होगा इस गीत के सारे डिटेल्स. और थिरके भी होंगे भाई, क्यों ना थिरके, क्योंकि आफ्टर मैनी डेज एंड मैनी ईयर्स रैदर मैं ये गीत सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप भी मेरे ही साथ ये जो है बात ज़रूर एकदम यस करेंगे, एकदम नॉट करेंगे कि हाँ भाई मैं भी उसी के आपके ही साथ हूँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ. एनीवे दोस्तों, आप थे कार्यक्रम छायालोक में. कार्यक्रम छायालोक में आज की शाम जाने अनजाने में मैं थी आपके संग आपकी दोस्त भारती, और ठीक 8:02 पर आपके साथ

कौन रहेंगी? रहेंगी संचिता, आपके साथ रात 9 बजे तक एकदम सुपर हिट तराने लेकर 107 FM रेनबो पर, कहीं मत जाइएगा। और कैसा रहा? मुझे तो भाई आज का कार्यक्रम करने में बहुत मज़ा आया, आपको भी ज़रूर गीतों के माध्यम से आपने भी अपने आप को एंटरटेन किया होगा, ज़रूर किया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। इस वक्त जो गीत है वो है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। ये भी एक फिल्म था बंटी और बबली, जिसके कई सारे ट्रैक्स रहे थे सुपरहिट। हाँ, सबसे ज़्यादा सुपरहिट था कजरारे वाला ट्रैक, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत इस अरे बाबा के बाद थोड़ा सा धीमा चलते हैं, हाँ है ना। हाँ, एकदम मैं जा रही हूँ तो थोड़ा सा आप धीमे धीमे सुनिए इस गीत को, रोमांटिक ट्रैक, और इंतज़ार रहेगा मुझे और आपको भी, आई होप मेरा, मुझे रहेगा। किसी शाम या सुबह मिलेंगे आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। इस वक्त सुन रहे थे आप कार्यक्रम जाने अनजाने, ठीक 8:02 पर आपके संग रहेंगी संचिता। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो की।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक
1: 107 FM रेनबो पर। कार्यक्रम है छाया लोक का दूसरा भाग, यानी कि 8 से 9 बजे आप और हम साथ रहेंगे, सुनेंगे कुछ फरमाइशी गीत 2213-1341 पर। आपके साथ हूं मैं संचिता, और 8:03 जहां न कोई बंधन होता है न कोई शर्त होती है, बस मन की मर्जी, दिल की धड़कन और संगीत का अनमोल संगम होता है। ये है आपका अपना मुक्त मन का संगीत सफर, जहां प्रस्तोता और श्रोता मिलकर करते हैं हर पल एक नई महफिल। तो आइए सुरों की इस अनमोल यात्रा में शामिल हो जाइए मेरे साथ, यानी संचिता के साथ, क्योंकि यहां हर गीत सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। तो चलिए, जाने अनजाने के बाद अब कुछ जाने पहचाने सफर पर चलते हैं आपके साथ। पहला गीत किसका है? अमित कुमार की आवाज में ये मेरे पसंद का गीत क्यों है? इसलिए है क्योंकि आज जन्मदिन है कुमार गौरव का। तो चलिए, लव स्टोरी फिल्म से अमित कुमार की आवाज, आनंद बख्शी ने लिखा इस गीत को, आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया, सुनते हैं आपके साथ। और अगला गीत होगा आपके पसंद का,

0: चलिए मैंने आपको याद तो दिला दिया कि आज कुमार गौरव का जन्मदिन है। और फिलहाल हमारे साथ इस वक्त फरमाइश लेकर कौन है? हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। और कौन है हमारे साथ बताइए?
1: मैं गौरीपुर पालपाड़ा हावड़ा से संजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: संजीत पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दूसरे भाग में छायालोक का। और क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं सुनना चाहता हूँ जीत फिल्म से सांसों का चलना।
0: आपको पता है इस गीत को किसने गाया है?
1: उदित नारायण अलका याग्निक।
0: बहुत खूब। किसको सुनाएंगे?
1: अद्भुत सामंत विश्वनाथ गायन और आपको।
0: थैंक यू हमारे साथ।
1: मेरा फिल्म फेवरेट है क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है और सलमान खान ने ये गाने में लिप्त है।
0: ओके। तो चलिए संजीत पाल जी के फरमाइश पर, इन्होंने फरमाइश की है सांसों का चलना। हाँ बिल्कुल, सांस तो चलते ही रहेंगे। सांस चल रही है तो लोग कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, इन सांसों का चलना ही कहां जिंदगी की निशानी है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो चलिए जीत फिल्म से समीर के बोल को संगीत से सींचा नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम है छायालोक। रेनबो पर कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत।

सासों का चलना दिल का मचलना किसकी बदौलत है? बिल्कुल ये सांस जो चल रही है किसी ना किसी की बदौलत तो है ही। एक तो ऊपर वाला और दूसरा वो जो नीचे हमारी सहायता करते हैं। फिलहाल हमारे साथ हेलो कोई जुड़ा है हमारे साथ, हम देख लेंगे। 2-1-3-1-3-4-1 पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ।

और अगर आप कोई भी ऐसी कोई गीत है जिसका फरमाइश आप करना चाहते हैं, किसी को सुनाना चाहते हैं या खुद सुनना चाहते हैं, तो 2214122131341 खुला हुआ है आपके लिए। चलिए कोई नहीं हमारे साथ इस वक्त, लेकिन हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी को अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। लहरा के जब गिरा ये रुखसार पर तेरे, जैसा घटा बरस पड़ी हो बहार पर तेरे, इस लाल दुपट्टे ने महफिल ही लूट ली कुर्बान, आज हम इस सिंगार पर तेरे। कौन सा गीत है चलिए सुनते हैं। लाल दुपट्टा मलमल का, अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीज की आवाज, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल को आनंद मिलंद ने संगीतबद्ध किया। अगर किसी को पसंद है ये गीत तो जरूर आके मुझे बताएं 2213131 पर। फिलहाल आपके लिए ये गीत। कार्यक्रम है छायालोक और 8:19, आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संजिता के साथ।

0: हावड़ा की सुप्रिया जी ने इस फिल्म के इस गीत को सुनने की फरमाइश रखी थी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के आवाज में। ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत और फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक और हमारे साथ इस वक्त हैं हेलो
1: हेलो गुड इवनिंग
0: दीदी। गुड इवनिंग आपको भी। अपना परिचय दे।
1: हमारा नाम संजीव कुमार मंडल दक्षिण 24 परगना से कथा बोल रही
0: हूं। स्वागत है आपका संजीव जी। और क्या सुनना पसंद करेंगे
1: आज के जो गानी सुनते चाहिए एवं हमें छायालोके साधारणतः फोन टोन करी ना फोन करा है ना।
0: अच्छा तो पहली बार आपने मिलाया है। ओके
1: तो भीषण ভালো লাগছে আর অন্তত ছায়ালোকে তো আশা হয় না তো আজকে এলাম তো যাই হোক অনুষ্ঠানটা শুনতে শুনতে আমাদের যেহেতু অনুরোধে গান বাজাচ্ছেন
0: জি
1: সে গানটা আজকে রেডিওতে শোনা যাচ্ছে না কেন দিদি ঠিক আছে যাই ফোনে শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে যে গানটির কথা বলতে চাই দিদি পরিন্দার ছবির একখানি গান সুরেশ ওয়াটকার এবং আশা ভোঁসলের গান তুমসে মিলকে এসা লাগা তুমসে মিলকে।
0: ওয়াও তো ইয়ে সুরেশ ওয়াটকার আর আশা ভোঁসলে কি আওয়াজ মে হ্যায় পরিন্দা ফিল্ম আপনে দেখি হ্যায় गाना बहुत पसंद है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ थे संजीव जी और जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की है तुमसे मिलकर जाने किस गुमान में हूँ मैं तुमसे मिलकर जाने किस गुमान में हूँ मैं देखो भूल गया सब पते ठिकाने आसमान में हूँ मैं कुछ ऐसा ही है इस गाने का फील भी। सुरेश वाटकर आशा भोसले की आवाज़ फिल्म का नाम परिंदा खुर्शीद हलौरी ने लिखा और आरडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम है छायालोक और इस वक्त 8:27 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक 8:32 और 24 सेकंड आपके साथ हूं मैं संचिता लेकर इस कार्यक्रम को और मेरे साथ हैं हेलो
1: नमस्कार दीदी भाई
0: नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं
1: शुभ संध्या प्रद्युत सामंत बोलती कामिना श्यामपुर हावड़ा से
0: श्यामपुर से प्रद्युत सामंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए कि क्या सुनना पसंद करेंगे
1: हीरो नंबर वन थे के मोहब्बत नहीं जाती ये गाना
0: अच्छा किसने गाया है आपको पता है
1: हाँ उदित नारायण फातना सरगम
0: और किसे सुनाना चाहेंगे प्रद्युत जी
1: हाँ आमी सुनाते चाहिए वासुदेव प्रसाद संजीत परार विश्वनाथ गायन को
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ थे प्रद्युत गायन तो चलिए प्रद्युत गायन की प्रद्युत सामंत जी जो कि विश्वनाथ गायन के लिए एक गीत उन्होंने डेडिकेट

किया है, मोहब्बत की नहीं जाती। बिल्कुल, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हमेशा हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं। इनकी फरमाइश पर समीर के बोल को सजाया है संगीत से आनंद मिलन ने, और आप जुड़े हुए जिस कार्यक्रम के साथ वो है छायालोक। हीरो नंबर वन से इस गीत को सुनेंगे।

0: मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती, ये शोला खुद ब खुद भरक उठता है, भरकाई नहीं जाती, कुछ ऐसा ही फील है इस गीत में। और इस गीत को आप सुन रहे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में हीरो नंबर वन से 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम छाया लोक। और मेरे साथ हेलो
1: नमस्कार आदाब सुंदर।
0: हाँ शुभ संध्या आपको भी। बताइए कौन, अपना परिचय दें।
1: मैं कुतुबुद्दीन मुल्ला बात कर रहा हूँ सुंदरबन तिलपी सन्नगर गांव से।
0: तिलपी से कुतुबुद्दीन जी क्या सुनना पसंद करेंगे, किसे सुनाएंगे?
1: पहले बताइए दीदी आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआ से। और ये बताइए कि क्या सुनेंगे?
1: इस टाइम पर चुप्पा रुस्तम फिल्म का गाना, अलका याग्निक का बंगला गाड़ी, ये गाना सुनना चाहता।
0: ओ बंगला गाड़ी, झुमके कंगना, वो वाला।
1: हाँ हाँ दीदी।
0: क्यों पसंद है ये गीत आपको?
1: इस टाइम में बहुत दिन के बाद सुन रहा है इसलिए।
0: ओ बहुत रेयर आप सुन, मतलब सुनने को मिलता है इसलिए। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये गाना आप किसको सुनाएंगे?
1: इस टाइम पर एक्सपोर्ट ट्राइबल लिमिटेड कंपनी का जितना वेस्ट बंगाल का लड़का इधर में काम करने के लिए आया था चेन्नई में, वो फ्रेंड को मेरा डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: अच्छा, अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं कुतुबुद्दीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है अलका याग्निक की आवाज में, आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गीत जिसे आनंद मिलन ने संगीतबद्ध किया, ओ बंगला गाड़ी झुमके कंगना, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। चलिए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर। कार्यक्रम है छाया लोक, जैसा कि आप जानते हैं। और इस वक्त 8:40 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

0: 8:45 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक। हाँ, शक का कोई इलाज नहीं है, फिलहाल इस गीत का जो फील है वही है। शौक नहीं, ये मेरे सपनों की उड़ान है। चार पहियों पर दौड़ती मेरी अपनी पहचान है। सुकून मिलता है इस आलीशान बंगले की छांव में, जो कमाया है अपनी मेहनत और लगन के दाव में। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है। कार्यक्रम है 107 FM रेनबो पर छाया लोक, और छाया लोक में मेरे साथ हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
1: मैंने रानाघाट नोदिया डिस्ट्रिक्ट से रूप देवना बात कर रहे हैं।
0: रूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही एक फ्री फॉर्मेट है, आप अपनी फरमाइशी गीत हम तक पहुंचा सकते हैं, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: मेरा फिल्म का जो गाना है, वो गाना का नाम है नजर के सामने जिगर के पार, फिल्म का नाम है आशिकी।
0: अच्छा, अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में। और आपके नजर के सामने जिगर के पास इस वक्त कौन है?
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपके नजर के सामने और जिगर के पास कौन है इस वक्त? कोई है जिसको आप सुनाना चाहेंगे इस गीत को? किसे सुनाना चाहेंगे? चलिए, मेरी आवाज शायद इनको नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ थे रूप कुमार देवनाथ रानाघाट से, जिन्होंने फरमाइश की है इस गीत की, जो कि समीर ने लिखा और नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया। अगली बार हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे रूप जी कि इस खूबसूरत गीत को आपने किसके लिए, किसको डेडिकेट किया। फिलहाल सुनते रहिए 8:47 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम छायालोक।

0: नजर के सामने रहने की चाहत और खूबसूरती को बयां करती बेहतरीन और दिलकश जो बातें। नजर के सामने तुम हर पल रहते हो, मेरे दिल की बात बिन कहे सुन लेते हो, कुछ ऐसा ही। इस खूबसूरत गीत को सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश्वनाथ जी रानाघाट से आए थे और अब मेरे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में जिसका नाम है छाया लो 107 एफएम रेनबो पर मेरे साथ हैं। हेलो,
1: नमस्कार संजीता जी।
0: नमस्कार, आपको भी। अपना परिचय दें।
1: हमें बिलाड़ा हवाखाना हुगली से के विश्वनाथ गायन बोलची दीदी।
0: बिलारा

0: से ओके
1: बिलारा
0: जी जी जी क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: हमें सुनते चाहिए इस मुहूर्त पे फूल और कांटे छवि थे के कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल कंठे।
0: हाँ जी
1: बारिश मैं और तू।
0: और ये गाना आपको इतना पसंद क्यों है?
1: पसंद दीदी इसमें बारिश होते तो माजे माजे हो जाने।
0: अच्छा बारिश के वजह से।
1: हाँ दीदी पुरानो अनुष्ठान फिर आना जन अनेक अनेक धन्यवाद
0: आपको भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आमी दीदी दुटो बंधु के सुनाते चाहिए।
0: बिल्कुल बोल दिए
1: पद्दुत सामंत संजीव पाल वासुदेव बसाक और अमित बंधु घोष और स्पेशल करे इस समय जरा सुनछे ना और स्पेशल करे आपनाके दीदी
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कुछ फरमाइशी गीत। इससे पहले नजर के सामने इस गीत को सुनना चाहा था रूप कुमार देवनाथ नानाघाट से और इस गीत की फरमाइश की है फूल और कांटे से विश्वनाथ गायन जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ। इस वक्त 8:54 और 35 सेकेंड।
2: पुराने दिनों का सफर पुराने गीतों का सिलसिला आप सुन रहे हैं छायालोक छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर पुराने गीतों का सिलसिला छायालोक छायालोक

फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े संजीत पाल, सुप्रिया जी, संजीत कुमार मंडल, विनीत जी, प्रद्युत सामंता, कुतुबुद्दीन जी और रूप कुमार देवनाथ और विश्वजीत गायन। चलिए सुन रहे थे आप कार्यक्रम छायालोक के अंतर्गत कुछ फरमाइशी गीत। इजाजत दीजिए संचिता को, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ कार्यक्रमों के साथ। तब तक सुनते रहिए इस गीत को और अगले कार्यक्रम के साथ भी रहिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तुम्ही सुनछो वीकेंड फिल्मी फीवर 107 FM रेनबो ते। वीकेंड फिल्मी फीवर। वीकेंड फिल्मी फीवर।

0: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবো তে। উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার,
1: मोहिनी बोल ना, आती क्या अपन लोग को डांस सिखाने?
2: इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी नहीं है, दुनिया में दो ही लोग कर सकता है मालूम, एक जेलो और एक शकीरा। डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट।
1: तो अपन ने कब बोला ना हुए?
3: एक क्लिपिंग से जे तू जोन हीरो हीरोइन ने गला सुन ले, बोलो तो तारा कारा।
4: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9903659992 নম্বরে। আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ।

0: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবো তে। উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার, উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার।
1: मोहिनी बोल ना, आती क्या अपन को डांस सिखाने?
2: इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी नहीं है, दुनिया में दो ही लोग कर सकता है मालूम, एक जेलो आणि एक शकीरा। डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट।
1: तो अपन ने कब बोला ना हुए?
3: एक क्लिपिंग से जे दुजन हीरो हीरोइन ने गला सुन ले, बोलो तो तारा कारा?
4: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত WhatsApp বা SMS করে 9903659992 নম্বরে। আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ।

0: सीने क्वीज।
1: तुमने इस लड़की को क्यों नहीं मारा?
2: एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है। मेरे दिल का सुकून थी वो। उसी ने कहा था, पंछियों को आजाद करो, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद करो। उसने कहा था, एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का, और मैं वही कर रहा हूं। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।
3: बोलते पारबे, कौन बिख्यात छवि डायलॉग एटा?
0: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9903659992 নম্বরে।

0: শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবো তে। উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার, উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার।
1: সিনে সিনে সিনে কুইজ।
2: তুমনে ইস লড়কি কো কিউ নাহি মারা?
3: এক আওয়াজ হ্যাঁ जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है। मेरे दिल का सुकून थी वो, उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद करो। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।
4: बोलते पारबे कौन बिखा तो छवि डायलॉग এটা
5: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত WhatsApp বা SMS করে 9903659992 নম্বরে। আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ।
0: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 FM রেনবো তে। উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার, উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার। FM রেনবো তে রেনবো ফ্ল্যাশব্যাক সং, রেনবো ফ্ল্যাশব্যাক সং।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।